0: जिसने ओड़ भरोसा रखिया सतगुरु तेरे दे, जिसने ओड़ भरोसा रखिया सतगुरु तेरे दे, आप तक उसनु अपना दर्श दिखाया, आप तक उसनु अपना दर्श दिखाया,
1: जिसने ओड़ भरोसा रखिया सतगुरु तेरे दे, जिसने ओड़ भरोसा रखिया।

0: तेरी नदर सबली हो जाती है जीद ते, तेरी नदर सबली हो जाती है जीद ते, ना कोई बैरी उसनू ना कोई दिसे पराया, ना कोई बैरी उसनू ना कोई दिसे पराया,
1: तेरी नदर सबली हो जा

0: सेवा सब बंद कर गए, हमले दा सारा पर बंद कर गए।
1: चार दित्ती फौज देखो बेहसाब च, चार दित्ती फौज देखो बेहसाब च।

0: तू कुछ कहिंदा घर दिखलावे जे कोई करे कुकर्मा नू नंबर हिट लिस्ट बिच आवे जे कोई करे कुकर्मा नू नंबर हिट लिस्ट बिच आवे
1: कहिंदा खरिया करिया।

0: आया के राधोबारी पर हो गज भज के तुर गया। आया के राधोबारी पर हो गज भज के तुर गया। जो सिरो वह घूमतदा ओ सब खुरदा खुरदा खुर गया। जो सिरो वह घूमतदा ओ सब खुरदा खुरदा खुर गया।
1: चढ़गी ओदी कुटी क्यों ए गल मास दिल्ली दा नोचे फड़ना पिंडरा वाले।

नामो कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक हुसी पी सच डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ तू अथा अपार अति ऊचा कोई अवर ना तेरी पाते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुख दाते दिन रैन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा अम्या दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह द शाह जिस पास बैठिया सोही है

गुरमुख ब्रह्म विचारो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा जिन कै अंतर वसिया मेरा हर हर तिन के सब रोग गवाए ते मुक्त भए जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाए। अज दा ए पावन श्री मुख वाक चौथे पातशाह सोडी सुल्तान सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी का उचारण किया होया है। अते सूही रागंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 735 तों आरंभ हो के 736 उपर संपूर्ण हुंदा है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याण पा लख होहे ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह ना कोए

प्रकाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रपंगी त्रकामे इंद्रपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीख मितो मीख सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चांद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल सिकन है हरासुल फकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है अरजाए करीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीन उल जमा है अमीक उल इमा है करीम उल कमाल है के जुरत जमाल है के अतलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अतलंग अनंग है के मितो भंग है मद पार छंद तो प्रसाद बुन मन प्रणाम गुण गर मदाव अरवर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंडन भव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अनच जंग आसन भंग उपमा पार गतम तुदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास अजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जगात आ जिज ना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार अढ़ीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मन छंद तो प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है ब्रह्मंड जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनास्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथप्पा थप है अकृता अकृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणी धृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है पाप भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो अंतर मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भांक भांके भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी एकामे एक अश्री छंद अजय अलय भैब अपू अजू नास अकाश अगंज भंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेख अनाम काम अगाटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात शांद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे नरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे

आप जी ने अपार बख्शिश कीती। चार पहर रैन आप जी दे भाणे अंदर सुखां दी बतीत होई। कोटान कोट शुक्र है, चार पहर दिन आया है अपने भाणे अंदर सुख दा बतीत करवाउणा। ग्रीव नवाज अमृत वेले आप जी ने संगत नूं खुले दीदार बख्श के निवाजिया है। आप जी दे प्रकाश दी सेवा उपरंत अमृत वेले दियां नितनेम दियां बाणियां दा जाप होया है। बाणी पढ़दियां सेवा करदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुलां लई खिमा जाचना है। अगे तो सुमत बख्शिश करनी।

सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की।

श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,

जिनकै अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए जिनकै अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन आरोग पए।

जैसे हम सतगुर लिए छुड़ाए, तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए।

0: हर रोज संगत च रगदी रे हाजरी आपा भाव मार लिये बख्शो बहादरी।
1: हर रोज संगत च लगदी रे हाजरी आपा भाव मार लिये बख्शो बहादरी।
0: हर रोज संगत च लगदी रे हाजरी आपा भाव मार लिये बख्शो बहादरी।
1: हर रोज संगत च लगदी रे हाजरी आपा भाव मार लिये बख्शो बहादरी।
0: तुसी हो दतार सारे जग दे तुसी हो दतार सारे जग दे तुसी हो दतार सारे जग दे सब नहीं तेरे दरों।

0: सिमरन सेवा नाल कर दो निहाल जी, सिमरन सेवा नाल कर दो निहाल जी, गुरमति नाल कर दो मालो माल जी,
1: सिमरन सेवा नाल कर दो निहाल जी, गुरमति नाल कर दो मालो माल जी,
0: रूप कढ़ियाणा तेरे दर तो, स्वरूप कढ़ियाणा तेरे दर तो, स्वरूप कढ़ियाणा तेरे दर तो, मंगण वेले नी कदे संगिया,
1: बख्शो हलाते ऐसे गुरु जी, मन रहे नाम विच रंगिया।

झमकी करके सिखा ना गांधी नेहरू दो में गांधी नेहरू दो में झमकी करके सिखा ना हो बकरी कौम इन्हा ने हो बकरी कौम इन्हा ने अपने

से जान जुग में सुख वासी से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का पाहु सब गवासी जिन

चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब उदकर

रंक पयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जेस तुहि तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम

थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित।